क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई, है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन पाई, कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई। जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म ना करना जाई।

मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तोर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा

जनन पिता लोक सदबंता कोई न किसकी धरिया सिर सिर समाहे ठाकर काहे मन बो करिया उड़े उड़ा वैसा कोसा तिस पाछे वचरे शरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकर कर तल धरिया

आद अंत एक कै अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जने आप सुवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो शत्रन को फल मोहमद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृश कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी

दुख ना तसे व्याप्त कोई अड़ल। सुने गुंग जो जाए सुरस ना पावे, सुने मूड़ चित लाए चतरता आवे। दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रहे, हो जो जाकी एक बार चौपई को के चौपई। सम्मत सत्रह सहस पुण जय अर्ध सहस पुण तीन कहे जय भाद्र सुधि अष्टम रविवार तीर्थ द्रव ग्रंथ सुधारा इस श्री।

जो निज ब्रह्मो सो कहा सो कहो जग माहे, जो ते प्रभु को त्याय हैं अंत स्वरूप को जाहे। दोहरा हर हर जन दुई एक है बिब विचार किशनाए, जल ते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखे समाहे। दोहरा

सगलवसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मंदावनी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकर का पैओ जिसका सब सधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो ए वस्त तजी न जाई नित नित रखो रारो तुम संसार चरण लग तरिये सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जातो नाई मैनू जो कितोई मैं निर्गुण आरे को गुण नहीं आपे तरस पियो तरस पिया मैं रामत होई सतगुर सज्जन।

सो प्रभ सारे दात करे, मात पिता संजोग उपाय, रक्त बिंद मिल पिंड करे, अंतर गर्भ उर्द लिव लागी, सो प्रभ सारे दात करे, संसार भव जल क्यों तरै, गुरमुख नाम निरंजन पाइय, अफरियो पार अफार टरै रहाउ। ते गुण विसर गए अपराधी, मैं बौरा क्या करूं, हरे तू दाता दयाल सबै सिर, एहन सदात समार करी।

0: सोने सतगुर जी नू, तक के सोने सतगुर जी नू, कुदरत भी बलहार जी मेरे शिवे
1: सतगुर
0: सोने सरदार जी मेरे शिवे सतगुरु

0: रोक सकदे तां रोक लवो खान जी, बड़ा चल चुके असीं अपमान जी।
1: रोक सकदे तां रोक लवो खान जी, बड़ा चल सु

0: काल कलेश लोभ मोह महापवज तारे राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
1: सतगुरदा पाया सहज सेती मन बजिया बधाइया
0: राग रतन बरबार परिया शब्द गावन आईया
1: दूत गावो हरी के राम जनी वसाया
0: कहे नानक आनंद।

फिरह जो हर हृदय सदा बसाए। बिन सतगुर नाहो ना पाइये बुझो कर विचार। नानक पूरा भाग सतगुर मिले सुख पाए जुग चार। महला तीजा। क्या गबरू क्या बिरद है मनमुख तृष्णा भुख ना जाए।

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुर

श्री गुरुदेव नमस्तुभि सिमरौ सिमर सिमर सुख पावो काल कलेह तन माहि मिटावो काल कलेस तन माहि मिटावो सिमरौ जाप संपर एकै नाम जपत अगंत अनेकै।

सुखमनी सौख अमृत प्रभ नाम भगत जना कह मन बिसराम रहाउ प्रभ कह सिमरन गर्भ नाम बसे प्रभ कह सिमरन दुख जम नसे प्रभ कह सिमरन काल पर हरे प्रभ कह सिमरन दुश्मन टरे प्रभ सिमरत कछ बिगल

हरे रंग प्रभु कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नव निध प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु कै सिमरन जब तप पूजा प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु कै सिमरन दरगह मानी प्रभु कै सिमरन होय सुफला प्रभु कै सिमरन सुफल फला से सिमरह जन आप सिमराय नानक ता कैला गोपाय प्रभु का सिमरन सब ते ऊचा प्रभु कै सिमरन उदरय मूचा प्रभु कै सिमरन त्रिसना बुझय प्रभु कै सिमरन सब कह सुजय प्रभु कै सिमरन नाही जम त्रासा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम हृदय माह समाए प्रभु जी बस सादगी रसना नानक जन का दासन दसना

अपनी गत मित जन हो आपे आपन संग या प्रवराते तुमरी उस्त तुम ते होए नानक अवर न जान सकोए। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल।

नाथ श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोय जो जो कहे सो मुक्ता हो सुनमीता नानक बिरवंता साधन की अदरज कथाष्टपदी साध के संग मुख उजल हो साध संग मल सगली खोद साध के संग मिटय अभिमान साध के संग प्रगटे सो ज्ञान साध के संग जय प्रभ नेरा साध संग सब होत निबेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साध की महिमा भरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा ब्रह्मा सुमानी साधक संग अगोचर मिले साधक संग सदा प्रफुल साधक संग आवे बस पंचा साध संग मृत रस पुंचा साध संग होए सबकी रेण साधक संग मनोहर मैन साधक संग नकत हूं तावे साध संग अस्थित मन पावे साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सामी साधु कै संग महापुनीत।

ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का वेता, ब्रह्म ज्ञानी एक सांग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जैस करे प्रभया, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी का बाल बाल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक, ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माह, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कसे

ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनि श्लोक उर तार जो अंतर नाम सर्व में पेखे भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानको अपरस सगल निस्तारे अष्टपदी मिथ्या नाही।

बृहस्पति कई कोट हुए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पैतीर्थवासी कई कोट बन ब्रह्म उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट पीसर होते कई

कै हाथे। कई कोट पै बैरागी राम नाम संग तिनले बिलागी। कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म है पार ब्रह्म रहन्ते। कई कोट दर्शन प्रभ प्या तिन को मिले हो प्रभ अविनाश। कई कोट मांग है सत संग पार ब्रह्म तिन लांगा रंग। जिन कहो हे आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा तहन तहन।

त्रिंगास कई कोड़ तात के बेते सदान हारे कोने त्रह कई कोड़ नाम रस पीवे अमृत सत सद ही जीवे कई कोड़ नाम गुण गावे आत्म रासुख सह समावे अपने जन को साथ साथ सुमारे नानक परमेश्वर के प्यारे श्लोक कारण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोय नानक तिस बलहार ने जल सर महियल सोए अष्टपदी

ग्रीवनिवाज जाक दृष्ट कछु नावे तिह तद काल दह दिस प्रगटावे जाक अपनी करे बख्शीस दा काले खन गने जगदीश जियो पिंड सब तिखी रास।

मिलाए। संत का दुखी अद बीते टूटे, संत का दुखी कहते काय न पहुंचे। संत के दुखी को ध्यान प्रभाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए। संत का दुखी अंतर दे थो था, जो सास बिना मृतक की लोथा। संत के दुखी

राम नाम जो करहे विचार से तनवंत गणी संसार मन तन मुख बोल है हर मुखी सदा सदा जान होते सुखी एको एक एक पछाने ये तुद कियो सो जी जाने नाम संग जिसका मन माने नानक तिन्ह निरंजन जान्या गुर प्रसाद अपने आप सुजे तिस की जानो त्रिसना बुझे साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग तेहो अर्जन रहत अनजन कीर्तन केवल बखियान गृहत मह सोई निर्वाण

कीर्तन गाय अनक बिगंत साधु राखे हर गुण गाय अमृत रास चाखे ओट गही संत दरिया सर्व सुख नानक तेह पायो मृतक कह जीवाल हार भूखे कह देवते आधार सर्वन।

कार जरास सेवा करत होए निह काम ही तसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा निसाव करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस

मीत सो सुख साधु सांग प्रीत जे सोभा को करह परिकरणी सासु बाप हर की सरणी अन की पावी रोग न जाय रोग मिटाय हर अवख दलाय सर्वन दान मह हर नाम निधान जप नानक दर गए परवान।

कह कित ठाए, जब आप हे आप अपनी ज्योत धरे, तब कवन डिडर कवन कद डरे, अपने चलते आप करने हर नानक ठाकुर अगमे उपार, अविनाशी सुख अपने आसन, तह जन्म मरन कहो कहां विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए, जब अवगत गोचर प्रभ कहा, तब चित्र गुप्त केस पूछ लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर गादे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे, अपने आप ही चर जा नानक अपने रूप आप ही उपर जा, जह निर्मल पुरख पुरख पद होता, तह बिन मैल कह क्या तोता, जह निरंजन निंकार निर्वाण, तह कौन कौ मान कौन अभिमान, जह स्वरूप केवल जगदीश, तह छल छिद्र लगत कौ कीस, जह ज्योत स्वरूपी जो संग समावे, तह किसे बहु कम तृप्तावे, करण करावन करने हार नान करते का नाही सुमार, जब अपनी शोभा अपन संग मनाई, तब कमन माए बाव मित्र सुत पाई, जह सर्व कला पे प्रवीण, तह वेद देव कहा कुचीन, जब अपने आप रतारे, तब सगन सगन कहा बीचारे, जह अपनी ऊचे अपने आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा, बिस्मन बिस्म रह।

बहर न आवे जाहे तेहते दूर कहाँ को जाए। ब्रे राखन आरत निरपा जप सगल पाहु मिटे प्रभ कृपा ति प्राणी छिट्ट जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख नाम जपत मन होत सुख चिंता जाय मिटे अहंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार। श्री उपर ठाडा गुर सूरा नानक ताके कार्य पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेख उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हारे रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जामी प्रख प्रधान जैसे मन बसे सोत निहाल ताके निक नावद काल।

का विश्राम सौन समाद अणह तैनाद कह न जाइया चरित विसमाद तिन देखिया जे साफ दिखाए नानक ते जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट ब्याप रहया भगवंत तरन माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंतन प्रभित है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पाणी बैसंतर माहे चार कुंट दिद से समाज तहते पिहनई कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमृत मैं देख ससी अर सूर नक्षत्र मैग बाणी प्रभु की सबको बोले आप ये डोल कबू डोले सर्ब कला कर खेले खेल मोल न पाए गुरह मोल सर्ब ज्योत में जाकी ज्योत धार रहे हो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नाम नानक दिन मैं हो विश्वास।

जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक सी पी सच सुचाए सोच न हो भई जे सोची लखबार छुपै चुप न हो भई जे लाए रहा लिवतार।

अभंगत अनुभूतंग अब अभंगत मित अपार गुणगणु उदार मनगण प्रणाम निर्वैन काम अद्वत प्रचंड मित गत अखंडाल कर्म आदर्श धर्म सर्वा प्रनाढ्य अन्न बाढ़ चाचरी शांत तत्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अभारे हरियंग करियंग निर्नामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र गाले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मान्या चतर चक्र दान्या चाचरी छंद न सतरे न मित्र न परम न पितर न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्र प्रेह पवित्र प्रतिश अतिश अदृश अकृशा भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के आ शुज देसे के आ भिजमेसे के आ गंज करमे के आ पंच भरमे के आ पिजलोके के आ दित सोके के अभूत भरने के विभूत करने के राजम प्रभा है धर्मंग तुजा है के आ शोक भरने के सर्व अपरने के जगतंग कृति है के शतरंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुभव अनुप है के आद अदेव के आ अभेव के चतरंग भी न के एक अधिन के रोजी रजा के रही मेरे हक है के पाक ब्याब के गैबुल गैब के अफुल गुनाह के शाहान शाह के कारण गुरिंद के रोजी दहंद है के राज करहीम के कर्मंग करीम के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वतर बान्य के सर्वतर दान्य के सर्वतर गाउना है के सर्वतर पावना है के सर्वतर देशा है के सर्वतर बेसा है के सर्वतर राजा है के सर्वतर साजा है के सर्वतर दीना है के सर्वतर लीना है के सर्वतर जाहो के सर्वतर पाहो के सर्वतर देशा है के सर्वतर बेसा है के सर्वतर गाला है के सर्वतर पाला है के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी के सर्वतर काज है के सर्वतर राज है के सर्वतर सुख है के सर्वतर पुख है के सर्वतर त्राण है के सर्वतर प्राण है के सर्वतर देशा है के सर्वतर पेशा है के सर्वतर मान है सदैव प्रधान है के सर्वतर जाप्या है के सर्वतर थाप्या है के सर्वतर भान है के सर्वतर मान है के सर्वतर इंद्रा है के सर्वतर चंद्रा है के सर्वंग करीमे के परमंग फहीमे के आकल अलामे के साहिब कलाम है के सुनल वजू है तमाम रजू है मैसुल सलाम है सलीख तो मदाम है गनीम शगस्त है गरीब बरसता है बुलंदुल मकान है जमीन जमान तमीज उल तमाम रुजुल दान है हरीफ उल अजीम है यकीन अनेकुल हरीफुल अजीम है रजाय के यकीन है अनेकुल तरंग है भेदा भंग है अजीजुल रिवाज है गनीम उल खराग है नृक स्वरूप है त्रिभुक्त विभूत है प्रभुत प्रवाह है सुयुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनुप है समस्तो बराज है सदा सर्व साज है समस्त सलाम है सदैव अकाम है निर्वाज स्वरूप है अगाध है अनूप है ओंगाद रूपेना स्वरूप अनंगी अनांगे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रकामे त्रिवर्गम त्रिभादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वागे सुसर्वा अनुरागे त्रिभुग स्वरूप है शिज है शूत है के नरकंग प्रणास है प्रथुल प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विभुग स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त पर सदा है विभुगत प्रवाह है अनुग स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है परम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अतूत है अनास है उदास है तंध है अबंध है भक्त है विरक्त है नास है प्रकाश है निचंत है सुनंत है अलिख है अधिक है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असम है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट शंत व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग तरानंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुगता सर्वंग मुक्तार साबल शांत त्व प्रसाद नमो नरघनासे सदैवंग प्रकाशे अनंगंग स्वरूपे अपंगंग विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगा स्वरूपे निर्बाद विभूते अनंगी नामे दर्भंगी दृघामे दर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते न साकं श्रीक मितो मीक सदैवंग प्रवाह अजय है अजय है भगवती शांत त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समसुल कलाम है के साहिब दिमाग है के सुनल चिराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमुल कमान है के सुनल दमाल है गरीबुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शिकान है रासुल फिकान है कलंकंग प्रणास है समसुल निवास है अगंजुल करीम है रजाय करहीम है समसुल जुबा है के साहिब गिरा है के नरकंग प्रणास है बहसुल निवास है के सरबुल का वन है मैसुल वन है तमामुल तमीजा समसुल अजिया परंगबर मीसा समसुल अदीसा देसुल एक है मैसुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल ईमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के जल के अचलंग प्रगास के मितो सुबास के आज स्वरूप के मितो अभिभूत है के मितो प्रसाह के आत्म प्रवाह है के चलंग अनंग के मितो अभंग मद भार शांत व प्रसाद
ਮਨ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਣਗਨ ਮੁਦਾਮ ਹਰ ਬਰ ਅਗੰਜ ਹਰ ਨਰ ਪ੍ਰਪੰਜ ਅਨਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮਨ ਮਨ ਸਲਾਮ ਹਰ ਨਰ ਖੰਡ ਵਰਨ ਰਮੰਡ ਅਨਭਵਨਾਸ ਮਨ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਣਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਲ ਥਲ ਮੁਦਾਮ ਅੰਸ਼ ਅੰਗਾ ਸਨਾ ਭਾਵ ਪਾਰ ਗਤਮਿਤ ਉਦਾਰ ਜਲ ਥਲ ਅਮਨ ਦਿਸੁ ਸਭਨ ਜਲ ਥਲ ਮਹਨ ਦਿਸੁ ਸਭਿਅੰਤ ਅਨਭਵਨਾਸ ਤਿਰਥਾ ਤੁਰਾਸ ਆਦਮ ਆਜਾਨ ਬਾਹੁ ਇੱਕ ਸਦਾ ਓੰਕਾਰ ਆਦਿ ਕਥਨੀ ਕਥਨੀਆਂ ਰਾਧ ਖਲਖਣ ਖਿਆਲ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਿਤਰ ਨਾਮ ਅੰਸ਼ ਜਗਾਤ ਅੱਜ ਜਿਨਾ ਬਾਤ ਅਨ ਝੰਜਗਾਤ ਅੰਦਰੰਜ ਬਾਤ ਅਨ ਟੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਅਨ ਠੱਠ ਅਪਾਰ ਆ ਡੀਟ ਧਰਮ ਅਤ ਢੀਠ ਕਰਮ ਅਨ ਬ੍ਰਣ ਅਨੰਦਾਤਾ ਮਹੰਧਰ ਬੋਲ ਮਨਾ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੁਣਾਲੇ ਹੈ ਅਰਕਾਲੇ ਹੈ ਖਲਖੰਡਨ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਡਨ ਹੈ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕਲਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਬਾਰਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਤਕੇ ਧਰਨ ਹੈ ਜਾਕੇ ਕਰਨ ਹੈ ਮਨ ਮਾਨ ਹੈ ਜਗ ਜਾਨ ਹੈ ਸਰਬੰਗ ਭਰ ਹੈ ਸਰਬੰਗ ਕਰ ਹੈ ਸਰਪਾਸ ਹੈ ਸਰਬਨਾਸ ਹੈ ਕਰੁਣਾਕਰ ਹੈ ਬਿਸੰਬਰ ਹੈ ਸਰਬੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡਸ ਹੈ ਖਲਖੰਡਸ ਹੈ ਪ੍ਰਤੇ ਪਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾਕਰ ਹੈ ਅਜਪਾ ਜਪਾ ਅਕ੍ਰਿਤਾ ਕਰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰੁਣਾ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾ ਧਰਨੀ ਤਿਰਤਾ ਅਮਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕਰਤਾ ਕਰਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਜਵਾ ਕਰਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਆਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਰਨਾਇਕ ਹੈ ਖਲਗਾਇਕ ਹੈ ਬਿਸੰਬਰ ਹੈ ਕਰੁਣਾਲਿਆ ਹੈ ਨਰਬਨਾਇਕ ਹੈ ਸਰਪਾਇਕ ਹੈ ਭਾਪੰਜਨ ਹੈ ਅਰਗੰਜਨ ਹੈ ਰਿਪਤਾਪਨ ਹੈ ਜਬ ਜਾਪਨ ਹੈ ਕਲੰਗ ਕਿਰਤ ਹੈ ਸਰਬਾ ਕਿਰਤ ਹੈ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਹਰਤਾ ਹਰੇ ਪਰਮਾਤਮ ਹੈ ਸਰਵਾਤਮ ਹੈ ਆਤਮ ਵਾਸ ਹੈ ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਭਰਿਆ ਦਿਸ਼ੰਦ ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜ ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ ਨਮੋ ਬਿਰਿੰਦ ਬਿਰਿੰਦੇ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਸੰਘ ਤਾਮ ਸੰਘ ਸਾਂਦ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਤਤੰਗ ਤਤੰਗ ਸੁਰਪੇ ਨਮੋ ਯੋਗ ਯੋਗੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਮੋ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨੇ ਨਮੋ ਜੁਦ ਜੁਦੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਭੋਜ ਭੋਜੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨ ਨਮੋ ਕਲਹਿ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਾਂਦ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ ਅਨਾਦੰਗ ਬਿਬੁਤੇ ਕਲੰਕਾਰ ਰੂਪੇ ਅਲੰਕਾਰ ਅਲੰਕੇ ਨਮੋ ਆਸ ਆਸੇ ਨਮੋ ਬਾਂਗ ਬੰਕੇ ਭੰਗੀ ਸੁਰਪੇ ਅਨੰਗੀ ਨਾਮੇ ਤ੍ਰਭੰਗੀ ਤ੍ਰਗਾਲੇ ਅਨੰਗੀ ਅਗਾਮੇ ਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਛੰਦ ਅਜਾਏ ਅਲਾਏ ਅਭਏ ਅਬਾਏ ਅਭੂ ਅਜੂ ਅਨਾਸ ਅਕਾਸ ਅਗੰਜ ਅਭੰਜ ਅਲਖ ਅਭਖ ਅਕਾਲ ਦਿਆਲ ਅਲੇਖ ਅਪੇਖ ਅਨਾਮ ਕਾਮ ਅਗਾਹ ਅਟਾ ਅਨਾਥੇ ਪਰਮਾਥੇ ਅਜੋਨੀ ਅਮੋਨੀ ਨ ਰਾਗੇ ਨ ਰੰਗੇ ਨ ਰੂਪੇ ਨ ਰੇਖੇ ਅਕਰਮੰਗ ਪਰਮੰਗ ਅਗੰਜੇ ਅਲੇਖੇ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਸੇ ਅਗੰਜੁਲ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸੇ।

संग्रह गैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आजुगा स्वरूप से अंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठव तुत पाता सकल मलेश करो रण गाता जय सुत शरणी परे तिनके दुष्ट दुख हावे मरे पुरख जमन भग परे दे हारे तिनके तुम संकट सब टारे जो गल कोई कबार ते आए हैं ताके काल निकट न आह रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तदकाला कृपा दुष्टन जाय ने हर हो ताके ताब तनक मैं हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाबा सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल वास्ते तय उबारा जिन्नर नाम तिहारो कहा दार्थ दुष्ट दोग ते रहा खड़केत मैं सरन तिहारी आभाद लेहो उबारी सर्व ठावर मोह हो सहाय दुष्ट दोग ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सब राता किलबिक सगल दे को हरता दुष्ट दोखिन को शाय करता श्री सुजप हे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकाला मन वांछत बल पावे सोई दुखना तसे बेआपद कोई अडल सुने गुं जो जाहे सुरसना पावई सुने मूढ़ चितलाए चतुर्थ आवई दुख दर्द भाव निगड़ना तन्नर के रहा और जो जाकी एक बार चाओ पई को कह चाओ पई संबद सत्रह सहस पढ़ जाय अर्थ सहस पन तीन कह जाय पा

आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया सह सेती मन मजियां वादाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया शब्द ता गावो हरि केरा मान जिनी मसाया कहे नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो।

आई। गुरु अमरदास की अगत कथा है, एक जी कश कही ना जाई, सोडी सृष्ट सगल तारण गाओ, अब गुरु रामदास को मिली बड़ाई, तरन गव खंड में है।

कोई आण मिलावै मेरा प्रीतम प्यारा, आओ तिस पह आप वेचाई, दर्शन हर देखण कैताई, कृपा करहे ता सतगुर मिले, हर हर नाम त्याई रहाओ। जे सुख दे ता तुझे अरादी, दुख भी तुझा त्याई, जे भुख दे ता इत ही राजा, दुख विच सुख मना।

कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हौ तिस पह आप वेचाई। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा,

राम सिमर राम सिमर एह तेरा काज है माया को संग त्याग प्रभ जू की शरण लाग जगत सुख मान मिथ्या झूठो सब साज है रहाओ सुपने ज्यों धन पछान काहे पर करत मान बारू की पीत जैसे बसदा को राज है नानक जन कहत बात बिन सजह तेरो गात छिन छिन।

गुरप्रसाद। कतांच माता कतांच पिता कतांच बनता बनोद सुत है कतांच प्रहात मीत हित बंधप कतांच मोह कटंबे अते कतांच चपल मोहनी रूपं पेखांते त्याग क्रोत। हरहांत संग भगवान सिमरन नानक लभदिं अचुत तन है। त्रिगंत मात पिता स्नेह त्रिग स्नेह प्रांत बांध बह त्रैग स्नेह बनता बला सुत है। त्रैग स्नेह गृहार्थ कह सार संग स्नेह सत्यं सुख्यं बसंत नानक है। मिथ्यांत देह खीनांत बलनु बरधंत जरुआ हित्यंत माया अत्यंत आसा आथित भवनु गानंत स्वासा पहान धर्म पतांत मोह कूप दुर्लभ देह तत आश्रय नानक गोविंद गोविंद गोविंद गोपाल कृपा। काच कोट रचंत तुय लेपनु रक्त चरमन है नवहंत द्वारू भीत रहतु बाय रूप अस्तंभ न है। गोविंद नाम न सिमरंत अज्ञानी जानंत अस्त्रिंग दुर्लभ देह उदुरहंत साध सरन नानक हर हर हर हर हर हरे जपंत सुभंत तुय अचुत गुणोग्य पूर्ण बहुलो कृपाला। गंभीर उच्च सर्वग अपारा प्रत्या प्रेम विश्राम चरण अनाथ नाथे नानक शरण। मृगी पेखंत बदक प्रहारेन लख आपदा है अहो जस रेखेन गोपाल है। नानक रोम न छेदे अते बहुत जतन करता बलवंत कारी सेवंत सूरा चतुर दिस है। बिकम स्थान बसंत उच्च है नह बसरंत नाम मरण कदांच है। बेखम थान बसंत उच्च नह सिमरंत मरण कदांच है। होवंत आ गया भगवान पुरख है नानक कीटी सास अकरखते। सबदं रतुं हितु मया कीर्तुं कली कर्म करतो आ मिटांत ततरागत भरम मोहं। भगवान रमण सर्वत्र थान दृष्ट तुय अमोघ दर्शन बसंत सा दर्शन। हर हर हर हरे नानक प्रंग जाप जपना कटांत रूपं कटांत दीपं कटांत राव ससियर नक्षत्र गगन। कटांत बसदा गिरतर से खंडं कटांत ललना सोत प्रांत हीतं कटांत कनक मानक माया सो रूपं। नह कटांत केवल गोपाल उचित अस्त्र नानक साध जन। लह बलंब धर्म बलंब पाप दृढ़ंत नाम तजंत लोभं सरण संत किल बिखनासं प्राप्त धर्म लखण। नानक जैसो प्रसन्न माधव है मृत मोह अल्प बुद्धियों रचंत बनता बनोद साह। जौबन बहक्रम कनक कुंडल है विचित्र मंदिर सोभंत बस्त्रा इत्यंत माया व्याप्तं। हे अचुत सरण संत नानक भो भगवान ए नम है। जन्म ता मरण हरखं ता सोग भोग ता रोग ऊचू ता नीच नाना सो मूचू। राजू ता मानु अभमानु ता हीनु परभिरत मार्ग बरतंत बनासन। गोविंद भजन साध संगेन आसरं नानक भगवंत भजन आसन। कृपंत हरियं मत तत ज्ञान बक्षीद बुद्धा कुशल थानु। बस्यंत रिखियं त्याग मानु शीतलांत रिधियं दृढ़ संत ज्ञान। रहंत जन्म हर दर्शलीना भजंत नानक शब्द बीणा कहंत बेदा गुणंत गुणिया सुनंत बाला बहुविध प्रकारा। दृढ़ांत सो विद्या हर हर कृपाला नाम दान जाचंत नानक। दैन हार गुरु गोपाला नह चिंता मात पित प्रात है नह चिंता कछ लोक कह। नह चिंता बनता सुत मीत है पर व्यर्थ माया संबंध न है। दयाल एक भगवान पुरख है नानक सर्व जी प्रतपाल कह। अनित बेतं अनित चेतं अनित आसा बहुविध प्रकार। अनित हेतं अहं बंधं परम माया मलनु बकार। भ्रांत जोन अनेक जठ रागन नह स्मरंत मलिन बुद्धियं। हे गोविंद करत मया नानक पतत उदाहरण साध संग मह। ग्रंथ गिर पतत पाताल जलंत दे दीप वै स्वंतर बहंत आगाह तोय तरंगं दुखांत ग्रह चिंता जन्म तमरण है। अनक साधन न सिद्ध्यते नानक अस्तंभं अस्तंभं अस्तंभं शब्द साध स्वजन है। कोर दुख्यं अनक हत्यं जन्म दरिद्रं महाबख्यादु मटांत सागल समरंत हर नाम नानक।
जैसे पापक काष्ठ भस्म करोत अंधकार सिमरत प्रकाशन गुण रमंत अग खंडन है रिद बसंत भय भीत दूत है कर्म करत मां निर्मल है जन्म मरण रहंत स्रोता सुख समूह अमोघ दर्शन है सरण जोग संत प्रय नानक सो भगवान खेम करोत पाछं क्रोध अग्रणी वह है निरासं आस पूर्ण है निर्तन भयं तनवंत है रोगियं रोह खंडन है भगत्यं भगत दान राम नाम गुण कीर्तन है पार ब्रह्म पुरख दातार है नानक गुर सेवा किन ना लभ्यते अतरं तरं तारण है निर्तनं धन नाम नरहर है अनाथ नाथ गोविंद है बलहीन बल केशव है सर्वभूत दयाल अचुत दीन बांध बंधा मोदरा है सर्वाग पूर्ण पुरख भगवान है भगत बच्छल करुणामय है घाट घाट बसंत वास देव है पार ब्रह्म परमेश्वर है जा चंत नानक कृपाल प्रसाद नह बिसरंत नारायण है नह समर्थं नह सेवकं नह प्रीत परम पुरखोत्तम तब प्रसाद सिमरते नाम नानक कृपाल हर हर गुरु भरन पोखण करंत जिया बिश्राम छादन देवंत दान सरजंत रतन जन्म चतुर चेतन है बरतंत सुख आनंद प्रसाद सिमरंत नानक हर हर हरे अनित रचना निर्मोहते दानु परा पूर्वेन पुचंते महीपते बपरीत बुद्धियं मार्त लोक है नानक चरंकाल दुख भोगते वृथा अनुग्रह गोविंद है जस सिमरण रदंत्र है

नित रोए खोटै पोतै ना पवै तिन हर गुर दर्श ना होए खोट जात ना पत है खोट ना सीजस कोए खोटै खोट कमावना आए गया पत खोए नानक मन समझाइए गुर कै शब्द सलाहा राम नाम रंग रतिया भार न परम तिना हर जप लहागला नरभउ हर मन माह श्री राग महला पहला घर दूजा तन जो बने अर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार पबन कीरे पत ज्यो ढल ढुल जुम्मन हार रंग माण लै प्यारिया जा जो बन नाओ हुला

हर कर जोही नीच सनात। काम क्रोध तन वसे चंडाल, तान क्रूप रा करतार फाई। सुरत मलुकी वेस ठगवाड़ा ठगी देस, खरा सियाणा बहुता भार। तान क्रूप रा करतार मैं कीता ना जाता, हराम खोर क्या मोह देसा दुष्ट चोर। नानका नीच कह विचार, तान क्रूप रा करतार। श्री राग महला पहला कर चौथा, एका सुरत जेते है जी। सुरत वे होना कोय ना की, जेही सुरत तेहा तिन राहु। लिख एको आबु जाहु, काहे जी करे चतुराई। लेवै देवे ढिल न पाई राहु, तेरे जी जी आंका तोहे। कित को साहिब आवे रोहे, जे तू साहिब आवे रोहे। तू ओना का तेरे ओहे, असी बोल बिगाड़ बिगाड़े बोल। तू नदरी अंदर तोलै तोला, जय करनी तै पूरी मत। करनी बाजो घटे घट, प्रणत नानक ज्ञानी कैसा होए। आ पिछाने बूझे सोए गुर प्रसाद, करे विचार सो ज्ञानी दरगे प्रवान। श्री राग महला पहला घर चौथा, तू दरियाओ दाना बिना।

तेरे भाणे सरबदा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आग्या पई अकाल की, तब चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी मान्यो, जो प्रभु को मिल बोच है। राज करेगा खालसा, ख्वार हुए सब मिलेंगे।